गाइए गणपति जग वंदना, गाइए सिंग गणपति इज ऑफ कोर्स गणपति, जग वंदना इज लाइक यू प्रेइंग एज इफ ही इज द होल वर्ल्ड. दैट वाज महालक्ष्मी शेनॉय रेंडरिंग द तुलसीदास भजन गाइए गणपति इन राग मारु बिहाग इन तीन ताल. ऑन दैट पीस शी वाज अकंपनीड बाय पी शंकर शेनॉय ऑन द हारमोनियम, दीपक नायक ऑन तबला एंड साई गिरिधर पाई ऑन द थाल. द नेक्स्ट पीस यू आर गोइंग टू बी हियरिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स कंपोजिशन ऑफ पुरंदर दासा. आई एम श्योर सम पीपल हैव ऑलरेडी पुट द सॉन्ग टुगेदर इन देयर माइंड, संग बाय वन ऑफ वेरी वेल नोन सिंगर्स ऑन स्टेज. इट वॉज फ्रॉम अ लाइव कॉन्सर्ट. टी एन शेषगोपालन इज गोइंग टू बी रेंडरिंग फॉर अस द फर्स्ट सॉन्ग पीपल लर्न, श्री गणनाथ इन रागम मलहरी, अ कंपोजिशन ऑफ पुरंदर दासा. द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग गोज समथिंग लाइक दिस. ओ लॉर्ड ऑफ द परमदा गानास श्री गणनाथ, यू आर द कलर ऑफ वर्मिलन सिंदूरा वर्ण एंड द ओशन ऑफ कंपैशन करुणा सागर. यू हैव द विसेज वदना of the mighty elephant Kari and a protruding belly Lambodara. You hold goddess Lakshmi, Lakumi, in your hand Kara. O son of Parvati, Ambasuta, you are worshipped by Vinuta, the gods Amara. And then it goes on to, you have all the holy men at your feet, Siddha Charana, and you're worshipped by the Paramada Ganas, who are the followers of Lord Shiva, Ganasevita. You grant your devotees all their wishes, Siddhi Vinayaka, and I bow to you, Te Namo. Without further ado, this song in Malahari, a composition of Purandaradasa, T.N. Seshagopalan for us. It's a little longer song, about 14 minutes.

गजवदना बेडुए इन रागम हम सुध्वनिया पुरंदरदास कॉम्पोजिशन रेंडर्ड फॉर अस ऑन द कर्नाटिक फ्लूट बाय वी के रामन. You're listening to Sangeet with Rangan, WPRB, Princeton, New Jersey, community-supported independent radio.

जय जय जय गणेश स्तुति इनराग केदार बाय पंडित जसराज फ्रॉम हिज एल्बम गणेश उपासना अ वर्जिन रिकॉर्ड रिलीज. वी ऑलमोस्ट गेटिंग टू द वी हैव अनदर 20 मिनट्स. आई हैव क्वाइट अ फ्यू मोर म्यूजिक्स लाइंड अप ऑल ऑफ देम स्टिल टू डू विद गणेशा कमिंग अप नेक्स्ट वीक. गणेश चतुर्थी इज इन सेप्टेंबर 14th इफ यू आर काइंड ऑफ कीपिंग टैब ऑन कैलेंडर्स. The next piece is going to be M.S. Gopalakrishna and his daughter Narmada on the violin. They are going to be playing for us Pranamamyaham Shri. This is in Ragam Gaula, a composition of Mysore Vasudevacharya. On this piece, they are accompanied by Karaikudi Mani on the violin. I'm sorry, Karaikudi on the Mridangam, because they are already playing the violin. There's no other instrument on that. Mysore Vasudevacharya's composition Pranamamyaham, M.S. Gopalakrishna and Narmada, father and daughter, on the violin, on Sangeet.